उनके सुखी एक एक की पीर पछान घट घट की पट पट की जान जब करख करा करतारा प्रजा धरत तब देहे अपारा जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप अपनी बूझ उचार तुम सब हीते रहत निरालम जानत वेद भेद अरयालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल विख सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछित फल पावै सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़ेला। सुनै गुंग जो जाहि सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो जाकी एक बार चौपई को कहै। चौपई संबत सत्रह है सहस पणिजै, अर्ध सहस पुन तीन कहिजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा। सवैया पाई गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहै हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कर

फतेह। परम सम्मान योग चवर शतर तख्त दे मालक वालिए दो जहां रहम तन दे जस में सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच

कि सचिकार सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुपाए दर्शनम परसेआए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अर सौ गुर सौ चटिय तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिय सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा हंद साहो

होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल देहे नानक सारिं कौ होए। जाते तेरे नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुरु पाया, मन हर लिव मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे, कर डंडौत पुन वड्डा हे। रहाओ साख तुहारा साधना जाने, आतने अंतर हो मैं कंडा हे। ज्यों ज्यों चलै चुबै दुख पाव हैं, जम काल सहै सिर डंडा हे। हर जान हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भाव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह मंडा हे। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा हे। जान नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही।

है सुख मांगे मुको कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विदाते शरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मुको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरप्रसाद पाय प्रमारत सतसंगत सेती मन कचना किया खेल बड़ मेल तमासा वाह गुरु तेरी सब रचना गुरप्रसाद।

अगम अनंत अनाद आद जिस कोई न जाने सिव बिरंच तुर ध्यान निते जिस वेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गणन समथ तरन तारन प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन्मतु

निर्मल नाम सुधा परपूर्ण शब्द रंग प्रगट दिनयागर गहर गंभीर अथा अतबड सुबर सदा सब विद्रत नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम

जाको मुंति अंतरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहित बिरंच जिस गावे जाको शिव मुन गहे नात जात कबिलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधिक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिर तो दास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बड़ाई दे गुर रामदास को सो तिन सतगुर सुख पाए।

नमस्तंग ने पर में नमस्तंग ने पे से नमस्तंग ने नामे नमस्तंग ने कामे नमस्तंग ने दाते नमस्तंग ने काते नमस्तंग ने धुते नमस्तंग पूते।

0: परम परम रूपे
1: नमो जोग जोगे सुरंग परम सिद्धे
0: नमो राधर जयश्रम परम वृद्धे
1: नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने
0: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
1: अपेक्षी अपरमी अपोगी अपोगते
0: नमो जोग जगेश्वरम परम

0: नमः तंसनाने
1: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत जंत्रं
0: नमो ईष्टिते नमो तंत्र तंत्रं
1: सदा सचिदानंद सर्वं परनासी
0: अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी
1: सदा सचिदा बुद्धदा वृद्धकर्ता।

0: भगवती चंद प्रसाद सत्य किया चिज देसे किया बिज पेसे
1: किया कंज कर में किया पांच पर में
0: किया बिज लोके किया दित सो
1: के अब तूत भरने के बबूत करने।

0: के कारण करिंद है के रोजी दहेंद है
1: राजक रही में के कर्मं करी
0: के सर्वं करी है के सर्वं दरी है
1: सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने
0: के सर्वत्र दोने के सर्वत्र पोने
1: के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे
0: के सर्वत्र राते के सर्वत्र साजे
1: सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीजे
0: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
1: के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे
0: के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
1: सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
0: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
1: सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे
0: के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है
1: के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण
0: है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेचे
1: के सर्वत्र माने सदैव प्रधान
0: के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए
1: के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने
0: के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
1: के सर्वं कलीमे के परमं फहीमे
0: के आकल में के साहेब कला में
1: सर्व वजू है तमाम रजू
0: है हमें सुसलाम है सदी कुदमदा में
1: निमुल शिकस्ते गरीबुल परस्ते
0: बरिंदु मकाने जमीनु जमाने
1: मिजुल तमाम है रजूल निदाने
0: हर फुल अजी मेरे जाए के यकीन है
1: कुल तरंगे हैं पेद हैं पांगे
0: हैं अजी तो निवाद है गली मुल खिराज है
1: मुकत स्वरूप है त्रिमुकत विभूत
0: है प्रभुक्त प्रभा है सजुक्त सुधा है

0: आभास है कि अमितो सुभास है,
1: ये अजब स्वरूप है कि अमितो प्रभूत है,
0: ये तो पसा है कि आत्म प्रभास
1: है, ये चरण रंग है कि अमितो पंग है,
0: हर बार चंद है प्रसाद मन मन प्रणाम गुणगान मुदाम,
1: हर बार गंज है नर पर पंज,
0: मन मन प्रणाम मन मन सलाम,
1: हर नर खंड भर नर मंडल,
0: पवन आस मन मन प्रकाश,
1: बस धन प्रणाम जल थल मुदाम,
0: हम जी जी अंगे आसन अपंग,
1: उपमा पारगत में उतार,
0: जल थल मंड दिस विश अपंड,
1: जल थल महंत दिस विश बेअंत,
0: पवन आस त्रितर तुरास,
1: जान बाहु के सुधा हूँ,
0: कार्य आदि कथनी अनाथ,
1: खंड के आगुर बर अकार,
0: सर पर नाम चित चरण नाम,
1: अंचित दाता जिजना बात,
0: अंचित गात्यन रंज बात,
1: अंचित बनारे

0: सुन है
1: ब्रह्मंडस है कलखंड है
0: परते पर है करुणा कर है
1: जप जप है तप तप है
0: अत्याकृत है अमृत अमृत है
1: अमृत अमृत है करुणाकृत है
0: अत्याकृत है तरनीत है
1: अतेश्वर है परमेश्वर है
0: अत्याकृत है अमृत अमृत है
1: जपाकृत है अमृत अमृत है
0: नायक है कल्कायक है
1: दिसंबर है करुणालय है
0: निर्णायक है सर्वायक है।

0: जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे
1: कोट रंग रंग से कोदर पौन के गौन को जात निवारे
0: भारी ब्रान के पूपली विनयाव शीश न जात विचारे
1: ते पे तो कहा पे पूप के अंत को नांगे ही पाए पदारे
0: जीत फिरे सब देश दिशान को बाज टोल में दंग नगारे
1: गुजत गोड़ गजान के सुंदर हिंसा की है राज हजारे
0: पुख भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात बेचारे
1: श्री भगवान को जय बिनंत को अंत के ताम सिधारे
0: तीर्थ नंद आत्म दान संजम ने मन एक विशेख
1: वेद पुराण कते कुरान जमीन जबान सबान के पेखे
0: कौन हार जति जता सब विश्व चार हजार के देखे
1: श्री भगवान पजे ब्रह्म भूपते एक रति बिन एक न लेखे
0: दुस्वा दुरंत वास सासना दुर जान दलेंगे
1: पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंकार न हलेंगे
0: मरोर मुआसन माते मतंगन मान मलेंगे
1: श्री भगवान की पाविद्या जहां निदान चलेंगे
0: वीर बार बड़े बड़े आर विचारे सार की तार पशैया
1: तोर देश मलेंद मुआसन माते गजान के मान मलेया
0: भाड़े ग्रान को तोड़न हार सुबात नीचक चार लवैया
1: सैं श्री सबको सिरनायक जाचक नेक सो एक दवैया
0: दानव देव निंदन साजर भूत पुएक भुआन जपेंगे
1: जीव के जल में थल में पल ही पल में सब ताप थपेंगे
0: पापन बाढ़ जाए तुन पापन के वो पुंज खपेंगे
1: फिरे सबे हम लोग चपेंगे
0: मानव इंद्र की इंद्र रात जो अंतर लोग को राज करेंगे
1: लेख स्वयं पर साज भरेंगे
0: महेश्वर बिशन सजीव अंत फसे जम फास भरेंगे
1: कहां
0: पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो
1: सात समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो
0: सो बैठ गए ऐसे ऐसो बैस बितायो
1: सुन लो सबे जिन प्रेम की हो तिन ही प्रपायो
0: बाहन पूछते रहो

0: दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास डबरिया
1: मुझो सदा हमारे पछा श्री तुझो करो रचा
0: लय मैं रखन हारे साहिब संत साहिब प्यारे
1: दिल बंधु जन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता
0: काल पाए ब्रह्मा भक्तरा काल पाए शिव जी अवतरा
1: काल पाए कर विष्णु भगवान।

0: बैठा को शिफ्ट पे संकीर गेटा
1: दिखाए चंबो आज गाच रूप से अब
0: रक्षा मेरी तुम करो सिख बाण सिख संगरो
1: दूसरी ते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रनकाता।

0: पाया
1: नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया।
0: सुन नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया।
1: पाया अमृत गुर कृपा की नी सच्चा मन बसाया।
0: जी जान सब तू दू पाए एक वेग प्रसन्न आया।
1: लब लोग अंकार चुका सतगुरु भला पाया।
0: कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुरते पाया।
1: भगता की चाल निराली चाला निराली भगता के विखम मार्ग चलना।
0: लब लोग अंकार तक तिसना बहुत नाही बोलना।
1: खन्यो दिखी बारो दिखी एक मार्ग जाना।
0: गुर प्रसादी जिन आप तजिया हर वासना समानी।
1: कहे नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली।
0: जीव तू चलावे तिव चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे।
1: जब तू चला है तेवे चला जिना मार्ग पावे।
0: कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा ते आवे।
1: जिसनो कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे।
0: कहे नानक सच्चे साहिब जो पावे तिवे चलावे।
1: एहो सोहेला सब सुहावा सब दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया।
0: एह दिन के मन वस्या जिन तुरो लिखिया आया।
1: एक विरे कनेरे करे गल्ला गली किने ना पाया।
0: कहे नानक सबद सोहेला सत गुरु सुनाया।
1: पवित्र होए से जना जिनी हर ते आया।
0: हर ते आया पवित्र होए गुरमुख जिनी ते आया।
1: पवित्र माता पिता कोटम से सो पवित्र संग सवाया।
0: कहंदे पवित्र सुनदे पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाया।
1: कहे नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर हर ते आया।
0: करमी सहज न उपजे विंड सहजे सहसा न जाए।
1: न जाए सहसा किते संयम रहे कर्म कमाए।
0: सहसे जीव मलिन है कित संयम तोता जाए।
1: मन तो वह शब्द लागो हर से रहो चित लाए।
0: कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे ए सहसा इव जाए।
1: जियो मैले बारो निर्मल जियो तो मैले तिनी जन्म जुए आया।
0: एह तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया।
1: वेदा मैं नाम यो तुम सो सुने नाही फिरे जियो बेतालिया।
0: कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया।
1: जियो निर्मल बारो निर्मल बारो तो निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी।
0: कूड़ किस ओहे पहुंचे नाही मनसा सच समाणी।
1: जन

0: जिस मिल रहे हर वसै मन आए।
1: हर आप मूलक है पार्थना के नानका जिन हर पले पाए।
2: हर रास मेरी मन बनजारा, हर रास मेरी मन बनजारा, सतगुर ते रास जानी।
1: हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी,
2: एहो तन तिना मिलया जिन हर आपे पाणा।
1: कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ बनजारा,
2: ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास ना जाए।
1: प्यास ना जाए होर सके तेज चर हर रस पले ना पाए।
2: हर रस पाए पल्ले पिए, हर रस बोहड़ ना तृष्णा लागे आए।
1: एहो हर रस करमी पाइए सतगुर मिले जिसे आए।
2: कहे नानक होर अनरस सब विसरे जा हर बसै मने आए।
1: ए शरीरा मेरा तुम्हें जोत रखी ता तू जग में आया।
2: हर जोत रखी तुद विच ता तू

0: आद एक अंकारा जल थल महियो की हो पसारा
1: आद पुरखम गते बनासी लोक चतुर्दश लोक प्रकाशी
0: हस्त कीट के बीच सुमाना राव रंग जे एक सर जाना
1: अद्वैलक पुरखम गामी सब कट कट के अंतर जामी
0: अलग रूप अचय अनपेखा राग रंग जे रूप नारेखा
1: बन चहिन सब उते न्यारा आद पुरख द्वे अवकारा
0: बन चहिन जे जात ना पाता सतर मित्र जे तात ना माता
1: सब ते दूर सबंदे नेरा जल तल मैयल जाए बसेरा
0: अनहद रूप अनाहद बानी चरण सरण जे बस्त पवानी
1: ब्रह्मा बिसनंत नी पायो नेत नेत मुख चार बतायो
0: ओट इंदर उपिंदर बनाए ब्रह्मा रुद्र उपाय कपाए
1: लोक चतुर्दस खेल रचायो बहुरा भी बीच मिलायो
0: दानव देव निंद अपारा गंधर्व जच रपे रचे सुबचारा
1: भूत पवित्र भवान कहानी कट कट के पट पट की जानी
0: आत्मा तुझे जात ना पाता एक रंग काहू नहीं रहता
1: सर्व ज्योत के बीच समाना सबू सर्व ढोर पहचाना
0: रहत अनकाल स्वरूपा अलख पुरख अवगत अवधूता
1: जात

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय। वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिरंगद गुर ते अमरदास रामदासै हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया।

बिरला पावे कोई, अविनाशी जीअन को दाता, सिमरत सब मल खोई, गुण निदान भगतन कौ बरतन, बिरला पावै कोई। मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई,

कलगी धर दशम पिता चौजी प्रीतम दे छोटे लाला नू सूबा सरहंद दे डरावे ते धमकियां जदों धर्म दे असूलां तो गिरा ना सकियां तां पापां दी पंड होर भारी हुंदी गई। जालम हाकमां ने दोवें छोटे साहबजादियां दे खिलाफ इस्लाम दा निरादर करन दी झूठी कहानी बना के कुफर फरेब भरिया मुकदमा दर्ज कर दिता। शरा दे मुताबिक काजी ने फैसला दिता कि दीन इस्लाम कबूल ना करन अते इस्लाम दी तौहीन करन बदले इन्हां नूं ज्यौंदे दी दीवार विच चिण दिता जावे। सूबा सरहंद ने सोचिया शायद हुण मौत दी धमकी तो डर के ही मन जाण, इस लई उसने फिर दोबारा अनेकां लोभ लालच दे के कहा कि तुसी इस्लाम कबूल कर लवो, दुनिया की हर नेहमत अते ऐशो आराम तुहानू मुहैया किते जाणगे। कोमल जिंदा ने सारियां गल्लां नू सुनदे होए इक्को जवाब विच कहा कि सानू डराउण धमकाउण जां लालच देण दी खेचल ना करो, सानू बचपन विच गुड़ती ही कुरबानी दी मिली है, इस लई असी प्यो दादे दे असूलां तो एक कदम भी पिछे नहीं हटांगे। जाकारे दी गूंज नाल दोवें छोटे साहबजादियां ने अगे फिर बोलदे हुए कहा, सूबिया सुन, तेरे कपट फरेब दे पर्दियां नूं चीर के एक दिन सच दा सूर जरूर चढ़ेगा, सानू खालसा धर्म जिंदगी तो वध प्यारा है। निक्कियां जिंदां दे मूहों वड्डियां गल्लां नूं सुन के आखर बेदर्द ते जालम सूबे ने उन्हां बच्चियां नूं ज्यौंदे दीवार विच चिण दा हुक्म दे दिता। मासूम जिंदां नूं नीहां च खड़ा के दीवार उसारी जाण लग पई। दशमेश दे दोवें राज दुलारे खुशी नाल खिड़े मथे मौत नूं जी आया कहिंदे हुए अडोल रहे।